आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948, श्रावण मास की 17वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 8 अगस्त 2026। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को है। बस कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक

0: फिनटेक कंपनियां एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1,000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम की प्रस्तुति में सुनते हैं संवेद स्वर में ये देशगान।

0: कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी और मन में बसे हनुमान।
1: श्री हनुमान जी का जन्म दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य तुला राशि पर थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न अग्नि राशि है, इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगलमय श्री हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी हैं। वे मंगल कामना करने वाले अपने किसी भी भक्त का कभी अमंगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। एकांत में ले जाकर रामचरित्र का उपदेश देकर उन्हें संकट मुक्त करते हैं। संकट मोचन हनुमान के रूप में काशी में वे आज भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सचमुच संकट मोचन कृपा निधान है।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। अब समय हो चला है चिंतन कार्यक्रम का। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचार।
1: खुदा पर विश्वास हर धर्म की बुनियादी कल्पना है। हर धर्म की यही शिक्षा है और मनुष्य की प्रकृति में ये बात मौजूद है। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मतभेद के बावजूद किसी को संदेह नहीं। कर्म से भटकाव की आखिरी सीमा दुराचार है और विश्वास मार्ग से भटकना ही नास्तिकता है। इसलिए दुराचार और नास्तिकता का कोई प्रकार ऐसा नहीं था जिससे अपना जीवन खाली रहा हो और दुराचार

0: भी पूर्ण रूप से नास्तिकता है। दुनिया किसी के लिए कभी नहीं बदल सकती, लेकिन अगर तुम स्वयं बदल जाओ तो उसको भी बिल्कुल बदला हुआ पाओगे। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए युवावस्था में तो ऐसी न थी जैसी अब बुढ़ापे में नज़र आ रही है। मिलन की शाम में यही रोज़ वाली दुनिया कितनी रोमांचकारी लगती थी, अब विरह की सुबह में वो बात कहाँ। विधाता की एक अनजानी शक्ति कब से अपनी ओर खींच रही थी, परंतु भुलावे की दुर्बलता ने दामन थाम रखा था। सत्य की ज्योति कब से आवरण उठा चुकी थी, परंतु अपनी ही अनुचित दृष्टि का पर्दा रुकावट बना हुआ था। कृपा करने के लिए अदृश्य स्वयं पुकार रहा था, परंतु मन वासनाओं के झमेलों में खोया हुआ था। इश्क की असफलताओं ने अंतिम चोट की तो अनायास ही आंखें खुल गईं। देखा तो एक दूसरे ही संसार का आकर्षण सामने था। न वो आसमान था, न वो ज़मीन, न वो संसार था, न वो वासना। जिस हाथ ने यहाँ तक पथ प्रदर्शन किया था, स्वयं उसको भी ढूंढा तो पता न था। मानो वो एक दीपक था कि जब तक रात के अंधियारे में चलते रहे, वो पथ प्रदर्शक बना रहा। जब भोर हो गई तो आवश्यकता न थी, बुझा दिया गया। आँखों का तो ये हाल था, कान लगाए तो अंदर और बाहर हर ओर एक ही आवाज़ उठ रही थी। वही दुनिया जिसमें अपने आप को भूलकर अपने हर जलवे से आँखों को, अपने हर नगमे से कानों को मस्ती के निरंतर निमंत्रण दिए, अब उसका कोना कोना चप्पा चप्पा होशियारी और दूरदृष्टि का आगार था। कण कण को बोलते हुए महसूस किया, पत्ते पत्ते पर कोई संदेश अंकित देखा। फूलों ने जबान खोली, पत्थरों ने उठ उठ कर संकेत किए, धूल ने उड़ उड़ कर मोती बरसाए। आसमानों को बार बार उतरना पड़ा कि सवालों का जवाब दें। धरती को कई बार उछलना पड़ा कि आकाश के तारे तोड़ लाए। फरिश्तों ने बाजू थामे कि कहीं पाँव न लड़खड़ाएं। सूरज चिराग लेकर आया कि कहीं ठोकर न लग जाए। सब ने आवरण उतार फेंके, सारे पर्दे छलनी हो गए। सबकी आंखों में कहानियां थीं। रात जैसे खो गई, अंधकार की खोज की मगर न मिला। निद्रा का पता पूछा तो किसी ने न बताया। सोया उत्साह जाग उठा और दिल फिर नई शक्ति और प्रेरणा के साथ वापस आ गया। इस जीते जागते संसार में जो कुछ है, उनमें से कोई भी न था जिसकी भ्रिकुटी पर तेवर या नैनों में चंचलता हो। सबकी जवानी बोलती हुई, सबके संकेत स्पष्ट, सबकी रेखाएं उभरी हुई थीं। न कोई होठ बंद रहा, न कोई प्रकाश छिपा रहा। आँखों और कानों के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ, दिल की व्यापकता ने सबको समेट लिया।
1: चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के विचार। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है और अब बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

अब एक नजर आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान पाठ। गायक कलाकार होंगे ए हरिहरन। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता खेतों की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। वार्ताकार होंगे कुंदन सिंह।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे वार्ता टिटनेस कारण और बचाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर एच एल राजपूत। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना

पर कार्यक्रम आसपास का समय रहेगा सुबह 7:31। फिल्म संगीत का आनंद आप लीजिएगा सुबह 8:45 पर, 9:25 पर, 10 बजे, दोपहर 12:30 पर, दोपहर 2:45 और दोपहर 3 बजे। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:45 पर आप सुनेगा डॉक्टर तबस्सुम सलीम के गाए कुछ ब्रजलोक गीत।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे शुभ्रा तलेगांवकर का गायन। कार्यक्रम आज के कलाकार का समय रहेगा सुबह 11 बजे। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेगा 11:30 पर। दोपहर 12 बजे लोक मंजरी कार्यक्रम में आप सुनेगा दामोदर शर्मा के गाए कुछ ब्रज लोकगीत। महिला श्रोताओं का कार्यक्रम पनघट का समय रहेगा दोपहर 1:15। इसमें आज चर्चा रहेगी बारिश के मौसम में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। वार्ता में सुनिएगा बूंद बूंद है जरूरी, वार्ताकार होंगी राखी गोयल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर आप सुनेंगे शोभी माथुर के गाए कुछ गीत। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आप सुनेगा विदुषी गिरजा देवी का कजरी गायन। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों में शाम 5:10 पर आप सुनेगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30। इसमें आज चर्चा रहेगी आभासी दुनिया का मोहपाश। वार्ता में सुनिएगा ज्ञान ध्यान और संतुलन का संगम होती है परीक्षा। वार्ताकार होंगी तृप्ति दुबे। ग्रामीण अंचल के श्रोता अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक सुनेंगे शाम 6:00। इसमें आज चर्चा की जाएगी मिशन शक्ति पर। साथ ही वार्ता प्रसारित की जाएगी भैंस के लवारों को पटेरों से बचाएं। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रिप्तीलाल राजपूत। साथियों का मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनिएगा चर्चा भारत छोड़ो आंदोलन। साथ ही वार्ता सुनवाई जाएगी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा। वार्ताकार होंगे शशि कुमार उपाध्याय। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनिएगा वार्ता इतिहास के आईने में काकोरी केस। वार्ताकार होंगे डॉक्टर आर सी शर्मा।

शाम 7:31 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन पाएंगे। फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या का समय रहेगा रात्रि 8:15। 8 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली से अनुप्रसारित इस सप्ताह संसद में। 8:20 पर लखनऊ केंद्र से आप सुनिएगा इस सप्ताह विधानमंडल में। और रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रेडियो पत्रिका संस्कृति भारती लघु रूपक राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। और रात्रि 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड पाठ, गायक कलाकार थे ए हरिहरन। अब समय है खेती की बातें कार्यक्रम का। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता, खेतों की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। वार्ताकार हैं कुंदन सिंह।
1: खेतों की उत्पादकता, खेत की भूमि की गुणवत्ता, उर्वरता, सिंचाई साधनों की स्थिति, कृषि निवेशों के प्रयोग एवं क्षेत्र विशेष में एक समय विशेष के अंदर ली जा रही फसलों एवं उनके शस्य क्रम पर निर्भर करती है। इसलिए मोटे तौर पर खेतों की उत्पादकता चार प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उर्वरता में वृद्धि, खेती के लिए सिंचाई साधन एवं अन्य सुविधाओं का होना, क्षेत्रफल विशेष में एक निश्चित अवधि में फसलों का लिया जाना तथा शस्य क्रम एवं फसल सघनता, कृषि निवेशों का संस्तुत मात्रा में समय अंतर्गत सही विधि से प्रयोग। भूमि की उर्वरता का तात्पर्य यह है कि उसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का पूर्ण समावेश रहे, जैसे फसलों को उगाने के लिए मुख्य रूप से नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, मॉलिब्डेनम आदि की भी पौधों को बहुत ही

सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की यदि भूमि में कमी है तो उसके लिए मृदा परीक्षण के आधार पर फसलों के लिए नत्रजनित, फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों की मात्रा संस्तुत की जाती है। इसी प्रकार से फसलों में अन्य तत्वों की कमी के लक्षण फसलों में परिलक्षित होने पर सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग की संस्तुति की जाती है, जैसे धान में खैरा रोग के लक्षण होने पर जिंक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग एवं फूल गोभी का फूल विकृत निकलने की स्थिति में मॉलिब्डेनम का प्रयोग करें। भूमि में इन पोषक तत्वों की पूर्ति रासायनिक उर्वरकों द्वारा लगातार करते रहने से भूमि की मूल संरचना प्रभावित होती है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में लगातार ह्रास होता रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब भूमि में जल धारण क्षमता, तापक्रम संतुलन क्षमता तथा कार्बन नत्रजन अनुपात असंतुलित हो जाने से फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है। साथ ही साथ नहरों के किनारे भूमि में जल स्तर ऊंचा होने के कारण तथा लवण के क्रम से ऊपरी सतह पर बने रहने से ऊसर भूमि हो जाने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अतः इन विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए किसानों को भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जहां एक ओर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ ही साथ हरी खाद एवं कंपोस्ट खाद तथा नील हरित शैवाल एवं अन्य जैव उर्वरकों का प्रयोग करना नितांत आवश्यक हो गया है, वहीं जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था तथा नहरों के किनारे सीपेज एवं तत्फल स्वरूप ऊंचे जल स्तर की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक उपाय अपनाने होंगे, तभी फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग का पूर्ण लाभ उठाया जा सकेगा और भूमि की गुणवत्ता भी बरकरार रह सकेगी। यह तथ्य सर्वविदित है कि बारानी क्षेत्रों की अपेक्षा सिंचित क्षेत्रों में भी सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता अधिक होती है। एक अध्ययन के अनुसार धान में सिंचाई सुविधाओं के कारण प्रति हेक्टर अतिरिक्त लागत 1292.45 रुपये आती है और उससे ₹1907 का अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गेहूं में सिंचाई सुविधाओं में प्रति हेक्टर ₹967.50 अतिरिक्त लागत आती है, जबकि अतिरिक्त प्रतिफल ₹2837.70 आता है। इसी प्रकार से अनियमित वर्षा और सूखा की स्थिति में जहां एक ओर सिंचित क्षेत्रों में 15-20% उत्पादन में कमी आती है, वहीं असिंचित क्षेत्रों में 50% से 100% हानि की संभावना रहती है। जुताई एवं अन्य शस्य क्रियाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग सीधे खेतों की उत्पादकता पर प्रभाव डालता है, जैसे सीड कम फर्टी डिल से बुवाई तथा पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रुपाई निश्चित रूप से अधिक उत्पादन लेने में तो सहायक सिद्ध हुए ही है। साथ ही साथ खेती में मानव श्रम की बचत से प्रति इकाई उत्पादन लागत में भी कमी आई है, जिससे किसानों को शुद्ध लाभ बढ़ जाता है। सिंचाई जल को उठाने के लिए पंप सेट तथा जुताई के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार से फसलों को खरपतवार एवं कीटों तथा रोगों से फसलों को बचाने के लिए कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में कृषि रक्षा उपकरणों में बहुत ही लाभकारी भूमिका अदा की है। बहुफसली खेती का प्रचलन और सीमित जल से अधिक मितव्ययी एवं लाभकारी प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए स्प्रिंकलर सेट एवं टपक सिंचाई प्रणाली बहुत ही लाभकारी है। सिंचाई के साधनों के द्वारा सिंचन क्षमता के सृजन के फलस्वरूप